आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान

0: अंतर्द्वीपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will address 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit is being held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. Mr. Modi is on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend the summit. On the first day of his visit, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, PM Modi pushed for a diplomatic resolution to global conflicts, emphasizing the need to move from endless war to the end of war.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है.
2: The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. Prime Minister Modi said it is a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights.
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा.
2: Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. India's real GDP has recorded a growth rate of 7.8% during the first quarter of current financial year compared to 6.9% during the same period previous year. Ministry of Statistics and Programme Implementation released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. It said Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. Secretary in the Ministry, Dr. Saurabh Garg, said growth across all sectors has been highly positive, which demonstrates that government interventions are having an impact despite geopolitical situation. Prime Minister Narendra Modi has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Union Home Minister Amit Shah said the credit for this strong performance goes to the people of the country and their hard work. Bihar and Jharkhand have signed an MOU on sharing of Son river water in the presence of Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary, Jal Shakti Minister C.R. Patil were also present on the occasion. Speaking at the event, Union Home Minister Amit Shah said the agreement between Bihar and Jharkhand has resolved a long-awaited water dispute in eastern India. He said the agreement will provide irrigation water to lakhs of farmers in large rural areas of Bihar and Jharkhand, along with drinking water for the people. The fourth Indo-German Environmental Forum will be held in New Delhi today to strengthen bilateral cooperation and facilitate multi-stakeholder exchange of environment and climate change. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, along with German Minister for Environment, Climate Protection, Nature Conservation and Nuclear Safety, Carsten Schneider, will co-chair the forum. Lionel Messi has announced his retirement from international football, bringing an end to a 20-year Argentinian career that included a World Cup triumph, two Copa America titles and a record 207 appearances for his country. Messi said the decision had been on his mind since the World Cup final defeat to Spain before the death of his father further convinced him it was time to step away. And that is the end of this news bulletin.

हम हैदराबाद या ऐसा क्यों है भाई? ऐसा गलत गलत बोले तो ऐसा गलत गलत बोल के आधे नाम का प्लेसेस ही चेंज कर दिया हम। लिस्ट पे अगला नंबर है नामपल्ली का। नामपल्ली और मल्लेपल्ली के नाम बोलते ही मेरे को शौर्मा का याद आ गई। पर मल्लेपल्ली का असली नाम क्या है मालूम? नेक नाम खानपल्ली, नेम्ड आफ्टर नेक नाम खान। ये कुतुबशाही टाइम के नोबल हुआ करते थे। ओवर द इयर्स आपने लोगों इसको नामपल्ली नामपल्ली बोल के नामपल्लीच बना दिए। तो अगली प्लेस का किस्सा सुनने से पहले एक अंग्रेजी गाना सुन लेंगे।

सहकारिता मंत्री जी का संदेश आप सबके समक्ष पढ़ना चाहूंगा। मैं आरंभ करता हूं। सशस्त्र सीमा बल के अलंकरण समारोह के अवसर पर बल के सभी जांबाज अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कुछ अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं के कारण इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, परंतु मेरी आत्मीय भावनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले सभी लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस आपदा के दौरान एसएसबी मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में अत्यंत सराहनीय भूमिका निभा रही है। संकट की इस घड़ी में एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई

साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट सेवाभाव के साथ आपके परिवारों के त्याग एवं सहयोग का भी सम्मान है। पदक विजेता अधिकारी और जवान बल के युवा कार्मिकों के लिए आदर्श हैं। मेरा आग्रह है कि आप अपने अनुभव, कार्य पद्धति और कठिन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों को नई पीढ़ी के साथ साझा करें। सीमाओं पर तैनात एसएसबी का प्रत्येक जवान देश का सजग प्रहरी, आपदा के समय प्रथम सहायक और भारत की सद्भावना का प्रतिनिधि है। मित्रवत सीमा पर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन एसएसबी की सबसे बड़ी शक्ति है। एसएसबी की विशिष्ट पहचान उसकी शक्ति और संवेदना के अद्भुत समन्वय में है। हिमालय जैसी अडिग दृढ़ता और गंगा जल जैसी पवित्र संवेदना के साथ एसएसबी भारत की मित्रवत सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकों की सेवा तथा पड़ोसी देशों के साथ आत्मीय संबंधों को निरंतर सुदृढ़ करता रहे। सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं और उनके परिवारों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा के आपके संकल्प, साहस, त्याग और समर्पण को कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब मैं अपनी ओर से कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मंच पर मेरे साथ जो मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल जी, गृह मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री राजेंद्र कुमार सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट, श्रीमती रेखा लोहानी एडिशनल डीजीपी, श्री रामलू नायक आईजी ऑप्स एसएसबी, इस सभागार में उपस्थित सीएपीएफ और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों के वरिष्ठतम नेतृत्व, उनके डीजीज, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और एसएसबी परिवार के सभी अधिकारी और कर्मीगण, गृह मंत्रालय की ओर से कुछ विषय हैं जो आज चूंकि मेरे को मौका मिला है तो मैं यहां रखना चाहूंगा। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारे मंत्रालय का और अंततः भारत सरकार का एक बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और संवेदनशील लक्ष्य है। 15,000 किलोमीटर की लगभग भारत और अन्य देशों की सीमा की निरंतर चौकसी और उसकी सुरक्षा जब तक हम मजबूत ढंग से नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस विभिन्न सीमाओं पर काम करती हैं, वो देश के प्रति एक बहुत उच्चतम उनका बलिदान है और देश निर्माण के काम में एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पूर्व एक चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भारत के सभी बॉर्डर्स के लिए परिकल्पित करी है। इस चतुष्कोणीय सीमा व्यवस्था में जो चार प्रमुख स्तंभ हैं वो हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, राज्य सरकारों के जो प्रथम पंक्ति में बॉर्डर्स पर कार्यरत कर्मचारी हैं, जिसमें बॉर्डर के जिलों के जिला अधिकारी, वहां के पुलिस निरीक्षक और अन्य जो पूरी व्यवस्था है बॉर्डर के जिलों पर जो राज्य सरकार ने स्थापित की हुई है, वो इसका दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें आयकर विभाग है, जिसमें नारकोटिक्स का पूरा व्यवस्था है। इस तरह के जो 15 से 20 प्रमुख निकाय हैं भारत सरकार के, जो आर्थिक अपराधों पर, नारकोटिक्स पर, फेक करेंसी पर निगाह रखते हैं, वो इसका तीसरा स्तंभ है। और अंततः इसका चौथा स्तंभ है जो वहां का समुदाय है, जो वहां के आम नागरिक हैं। ये शायद पहली बार स्वतंत्र भारत के लगभग 75 से 80 वर्ष के इतिहास में एक ऐसी परिकल्पना को जन्म दिया गया है जिसके प्रणेता

गृह मंत्रालय के माननीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनके आदर्श से ये परिकल्पना विकसित हुई है। और यहां मुझे इस परिकल्पना के बारे में बताते हुए इसलिए मुझे हर्ष भी हो रहा है और ये प्रासंगिक भी है कि इस व्यवस्था को आत्मसात किया जाए सभी स्टेक होल्डर्स में और इसको ग्राउंड पर सुचारू रूप से उतारा जाए। इसका पहला जो बड़ी मीटिंग हुई थी वो एसएसबी के ही तत्वाधान में भारत नेपाल बॉर्डर में बिहार के किशनगंज और लगे हुए जो जिले हैं उनको सम्मिलित करते हुए लगभग आज से 6 से 7 महीने पहले हुई थी। तो इस पूरी व्यवस्था जो कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ वर्षों में एक बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के रूप में उभरेगी, इसका जन्म एसएसबी के ही कर्मभूमि में हुआ था और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को आरंभ करने की जो बधाई है उसके पात्र एसएसबी के महानिदेशक, उसके अधिकारीगण और उसके कर्मी हैं। उसके उपरांत इस व्यवस्था को और विकसित किया गया गुजरात के बॉर्डर्स पर, राजस्थान के बॉर्डर्स पर, त्रिपुरा के बॉर्डर पर और अंत में बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर्स हैं उनमें इसकी अंतिम बैठक लगभग आज से 1 महीने पहले हुई थी। इन्हीं बैठकों के क्रम में हम और जगह भी जाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर जिले हैं उनके साथ वार्तालाप करके इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये नई पहल जो गृह मंत्रालय में आरंभ हुई है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक प्लानिंग है और इसमें एसएसबी जो हमारी एक अहम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो दूसरा विषय मैं एसएसबी के बारे में आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूं वो ये है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अपने आप में एक अनोखा कार्य क्षेत्र है क्योंकि वहां जो हमारी सीमाएं हैं वो मित्र देशों से लगी हुई हैं, इसलिए वहां बाड़ लगाने का कोई प्राविधान नहीं है और बाढ़ जो सुरक्षा प्रदान करता है उस सुरक्षा के बगैर एसएसबी को उस सीमा को सुरक्षित रखना है। पिछले 2 वर्ष में मेरा जो अपना अनुभव रहा है सीमा सुरक्षा के विषय में वो ये है कि ये अपने आप में एक कठिनतम कार्य है। बिना किसी फिजिकल बैरियर के एक बॉर्डर को सेफ रखा जाए इसकी कल्पना शायद विश्व में बहुत कम जगह पर की गई है और एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि एसएसबी ने पिछले कुछ वर्षों में इस बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के नवाचार किए हैं जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं लेकिन जिनका प्रभाव लगभग लगभग उतना ही है जैसे कि वहां पे एक भौतिक बाड़ की व्यवस्था हो। इसमें डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा लेकिन फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से, रडार और सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य प्रणालियों को विकसित करके आज एसएसबी ये सुनिश्चित करता है कि नेपाल से और भूटान से जो भारत में आवागमन हो रहा है उस पर एक पैनी निगाह रखी जाए और किसी भी हालत में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी ऐसा तत्व जो भारत में किसी भी प्रकार का उपद्रव करने में के लिए यहां आ रहा हो उसको हम बॉर्डर पे ही उसको रोक सकें और उसको वहीं पे अपनी गिरफ्त में ले सकें। इसमें सफलताएं भी मिली हैं और अभी हाल में ही गृह मंत्री जी सिलीगुड़ी गए थे, वहां एसएसबी ने एक विस्तृत उनके समक्ष प्रस्तुति भी की थी और उसके माध्यम से बताया था कि मानव तस्करों से लेके एफआईसीएन के स्मगलर से लेके नारकोटिक्स और आर्म्स के जो नेटवर्क्स हैं उन तक एसएसबी ने अपनी पकड़ मजबूत करी है और एक हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिला और एक इस बात का सामने प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिला

0: Let's see who's it. Hello?
1: Good afternoon, sir.
0: Hello?
1: Hello. Good afternoon, sir.
0: Hello, sir.
1: Good afternoon, sir.
0: Good afternoon, sir. So who's on the line? क्या मैं
1: Excuse me, sir.
0: हेलो
1: Hello.
0: हाँ बोलिए सर. कैन यू हियर मी नाउ?
1: नरसिम्हा रेड्डी प्रेमावती पेज से बोल रहा हूँ.
0: नरसिम्हा रेड्डी सर. हेलो,
1: आप कैसे हैं सर?
0: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया सर.
0: गुड सर, थैंक यू. सो आपको आप सुना है क्या टॉपिक क्या है बोल के आज का?
1: जी, सुना सर, जी सुना सर,
0: या
1: उनके ही
0: सो
1: बात कर रहा हूँ आपसे.
0: या तो वो कौन सा मूवी है जो आप?
1: मेरा अमिताभ बच्चन का सर, नमक हलाल.
0: नमक हलाल. अरे
1: नमक
0: ओ क्लासिक.
1: हलाल हिंदी सिनेमा में, और तेलुगु में जो बोलते भद्राचलम है, श्रीहरि का. अच्छा,
0: यस यस या
1: भद्राचलम तेलुगु में, भद्राचलम हिंदी में नमक हलाल. ये कभी भी मैं देखना चाहता हूँ, बार बार भी देख सकता हूँ. देख के इंटरेस्ट रहता, कोई बोर नहीं आता मेरे. इसमें एंटरटेनमेंट इसमें मिलता है हिंदी में. उसमें जो है ना, अपने को जो है ना, एक्सरसाइज वगैरह जो कैसा एक बार मार खाने के बाद कैसा वापस आना लीजिए, वो उसमें मैसेज रहता सर.
0: राइट.
1: हाँ, ये वो ये देखने के लिए मैं इंटरेस्ट रहता हूँ.
0: ऑसम सर, ऑसम. सो मैं
1: सर,
0: समझ गया
1: आपका शुभ नाम सर?
0: सर. मेरा नाम है पवन, आई एम आरजे पवन.
1: आरजे पवन. ओके सर, थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक यू
1: तो
0: सर,
1: फिर सर, अगर
0: थैंक्स.
1: हो सका तो उसमें नमक लाल का जो पहला गाना है, तो बजरू गुंजरू बोल के गाना है, देखो वाटर टैंक में डांस करता अमिताभ बच्चन.
0: श्योर सर, श्योर. अगर
1: चप्पल चप्पल के
0: पॉसिबल
1: साथ
0: है
1: का डांस
0: तो,
1: है,
0: अगर
1: बहुत.
0: वो ट्रैक लिस्ट में है तो मैं डेफिनेटली वो सॉन्ग
1: हाँ
0: प्ले
1: जी,
0: करूंगा.
1: कोशिश करिए, अगर कोशिश करिए है तो सुना दीजिए.
0: श्योर सर, श्योर.
1: ओके, थैंक यू.
0: थैंक यू सर. सो दैट वॉज नरसिम्हा रेड्डी गारू, हु इज आवर रेगुलर लिसनर एंड रेगुलर कॉलर. सो आई ट्राई टू लुक फॉर द सॉन्ग विच सर हैज रिक्वेस्टेड, बट इन द मीन टाइम प्लीज लिसन टू दिस सॉन्ग.

So that was Zinda from Bhag Milka Bhag, another gripping and very inspiring sports drama. So we have our another call on the line. So let's take him on air. Hello? Hello? हेलो, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. एक मिनट, मैं आपको ऑन एयर लूंगा. हेलो हेलो हेलो हेलो. आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कॉलर्स एंड देयर नेटवर्क, आई बिलीव. हेलो एनीवेज, इफ यू वुड लाइक टू कॉल अस, आवर नंबर इज, या इफ यू वुड लाइक टू कॉल अस, आवर नंबर इज 0402323003, 0402323484821. So please call us and let me know what your favorite movie is which you would like to revisit again and again. तो तब तक और एक गाना सुन लीजिए.

0: तो आप क्लियर कर दीजिए,
1: डेफिनेटली
0: जैसे
1: डेफिनेटली
0: आपके
1: डेफिनेटली,
0: तरीके
1: अगर
0: हो
1: मिल
0: गए
1: गया
0: हैं
1: तो मैं
0: आपने,
1: डेफिनेटली आपका,
0: हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगी।
1: श्योर श्योर मैं डेफिनेटली
0: आप
1: प्ले
0: मुझे
1: करूंगा
0: वक्त
1: सर।
0: दिए, शुक्रिया सर। सबको सलाम, मुमताज बाजी को, मोहम्मद अफजल साहब को,
1: हाँ
0: मेजर बिन बाजी को भी सलाम, शुक्रिया सर।
1: थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। सो दैट वॉज शमशेर जी कॉलिंग अस। सो वी हैव आई डेफिनेटली लुक फॉर द सॉन्ग विच शमशेर जी हैज रिक्वेस्टेड, बट इन द मीन टाइम प्लीज लिसन टू दिस सॉन्ग।

छाया होता है वो एकदम गायब हो जाता है। इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर लोगों में कोई ख़ास तासुर कायम करने में नाकाम रहते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनका अंदाज़ गुफ्तगु दूसरों को अपना गर्विदा बना लेता है। ज़ाहरी तारुफ ज़्यादा से ज़्यादा चंद लम्हों पर मुहित होता है, जबकि अखलाकी तारुफ हमेशा के लिए मजमूई पहचान बन जाता है और लोगों की हमारे बारे में राय का हतमी तायुन करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम ज़ाहरी व आर्जी तारुफ से ज़्यादा अपने दायमी तारुफ पर तवज्जो दें। अपनी जिस्मानी वज़ाकता को पुरवखार और मुतासिर कुन बनाने से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दें कि हमारा अंदाज गुफ्तगु कैसा है, हम दूसरों से बात करते वक्त कैसी ज़बान और किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये भी गौर करें कि कहीं हमारे अल्फाज किसी की तौहीन तो नहीं कर रहे, कहीं हमारे अल्फाज किसी की शख्सियत को मसख करने का सबब तो नहीं बन रहे। ये भी गौर करें कि कहीं हम खुद को बड़ा साबित करने के चक्कर में छोटे तो नहीं हो रहे, कहीं हम खुद परस्ती के जाम में मुब्तला होकर अपने आप को इंसानियत के दर्जे से गिराने का काम तो नहीं कर रहे। याद रहे अल्फाज बहुत गहरा असर रखते हैं। एक मशहूर मकौला है कि अल्फाज तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये कौल कोई गलत नहीं है, बेशक अल्फाज के घाव बाज औकात तलवार से ज्यादा गहरा जख्म देते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तलवार का घाव नजर आता है लेकिन अल्फाज का घाव नजर नहीं आता। कहते हैं वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन सालों गुजरने के बाद भी तलवार का जख्म भरने के बावजूद अपना निशान छोड़ जाता है, वैसे ही अल्फाज के घाव भी हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ जाते हैं। इसीलिए अल्फाज का इंतखाब इंतहाई मोहतात अंदाज में करें। ख्याल रहे कि कहीं गुस्से में कहे गए हमारे अल्फाज किसी की रूह को छलनी करने का सबब ना बन जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी के साथ किसी इख्तलाफ के नतीजे में हम तलख कलामी कर बैठते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे अल्फाज सामने वाले की ज़ात की तहखीर कर रहे हैं। कुछ वक्त बाद जब गुस्सा ठंडा होता है तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर हम माजरत चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हम ये भी जवाब पेश करते हैं कि गुस्से में बदकलामी हो गई, पता ही नहीं चला। सामईन, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यही वक्त तो असल में बर्दाश्त से और मसलहत से काम लेने का होता है, और ये भी याद रखने की ज़रूरत होती है कि माजरत करने से सिर्फ आपके अपने दिल का बोझ और एहसास से जुर्म कम हो सकता है, लेकिन जिसको आपके अल्फाज ने ठेस पहुँचाई है उसे आपकी माजरत से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये माजरत और नदामत जैसे अल्फाज हम अपने ज़ाती सुकून के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी शीशे के ग्लास को तोड़ने के बाद अगर उससे माजरत की जाए तो क्या वो पहले की तरह जुड़ जाता है? बिल्कुल नहीं। तो याद रखिए कि इंसानी दिल शीशे से ज़्यादा नाजुक होता है। अपने अल्फाज के नश्तर से उसे छलनी करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। आजिज़ी और बुर्दबारी इंसानियत के तकाजे हैं। अशरफुल मखलूकात होने का मतलब तकबर में मुब्तला होना हर किस नहीं, बल्कि आजिज़ी के साथ उरूज की मंजिलें तय करना है और इस रफ़त व सरबुलंदी पर हमा वक्त परवरदिगार का शुक्रगुजार भी होना चाहिए। हमारी ज़बान और हमारा अंदाज गुफ्तगु हमारे रवैये का तयन करता है और रवैया किरदार की तश्कील करता है और ये किरदार हमारी तरबियत की पहचान बनता है। वो कहते हैं ना कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। हमारे अंदाज गुफ्तगु से, हमारे रवैये से लोग इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी तरबियत किस तरह के हाथों में हुई है। ये एक मुसलम हकीकत है कि इंसान के किरदार और अखलाक की तामीर पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाती है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा घर के माहौल और अफराद ख़ानदान के रवैयों का होता है। इसलिए बहैसियत अफराद, वालदैन और ज़िम्मेदार शहरी हमें हर लिहाज से अपने अपने घरों में अखलाकी रवैये और अंदाज़े गुफ्तगु की अहमियत को फरामोश नहीं करना चाहिए। बच्चों को बच्चे समझकर हमेशा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए बच्चे नहीं रहना होता है, उन्होंने बड़ा भी होना है और इसी माशरे के अंदर रहते हुए अमली ज़िंदगी के तकाजे भी निभाने हैं। आजकल हम देखते हैं कि अखलाक की कोई ख़ास अहमियत नहीं रही। ज़ाहिर को बढ़ चढ़ कर खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है। लिबास, जूतों, बैग्स और तरह तरह की चीज़ों पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरों के सामने हम कमतर नजर ना आएं। लेकिन जो चीज़ हमारी असल पहचान होती है, यानी हमारा अखलाक, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने में यकीन रखते हैं। किसी ने एक सुनाई

0: तो हमें तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक बदले में उसे चार ना सुना ले। आखिर क्यों हम अखलाक जैसी इस इंतहाई ज़रूरी चीज़ को यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं? देखा जाए तो हम मजमुई तौर पर अखलाकी बदहाली का शिकार हैं। हमें बहैसियत फ़र्द और बहैसियत कौम संजीदगी से अखलाकियात की अहमियत को समझने की अशद ज़रूरत है। वालदैन, उस्ताद, भाई बहन और जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हमें अपने बच्चों, तालिबे इल्मों और बहन भाइयों को अखलाक की अहमियत से रोशनास कराना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
1: तो सामीन, आज के हरफ ताबिंदा ने हमें ये खूबसूरत पैगाम दिया कि इंसान की असल खूबसूरती उसके चेहरे या लिबास में नहीं, बल्कि उसके किरदार, अखलाक और गुफ्तगू में पोशीदा होती है। हमारी जबान से निकलने वाले अल्फाज हमारे मिजाज और शख्सियत का आईना होते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचना, गुस्से में खामोश रहना, दूसरों की इज्जत करना और इख्तिलाफ के बावजूद शाइस्तगी का दामन हाथ से न छोड़ना ही एक बावकार इंसान की पहचान है। याद रखिए, टूटा हुआ शीशा शायद दोबारा जोड़ा जा सकता है, लेकिन दिल पर लगने वाली चोट का निशान आसानी से नहीं मिटता। इसलिए अपने अल्फाज को मोहब्बत, एहतराम, आजिजी का लिबास पहनाइए, क्योंकि मुमकिन है कि आपका एक नर्म लफ्ज किसी के लिए पूरी जिंदगी की खुशी बन जाए।

हुआ है, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल को कहते हैं दीवानी और दीवानी कानून, और क्रिमिनल को कहते हैं फौजदारी कानून। तो पहले देखते हैं फौजदारी कानून। फौजदारी कानून और उसके खवा

इसे दर्ज करवानी चाहिए, जैसा कि आप पुलिस स्टेशन जाकर आप पहले जीडी एंट्री करवाते हैं, जनरल डायरी जिसे कहते हैं, अपना कंप्लेन लेटर देते हैं। तो सिर्फ कंप्लेन लेटर देने से कंप्लेन एफआईआर नहीं हो जाती, आपको पहले कंप्लेन लेटर देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करेंगे पुलिस ऑफिशियल्स, फिर जब कहीं जाकर एफआईआर होंगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अगर एफआईआर लेने से कोई पुलिस ऑफिशियल मना कर दे आपको, तो आप क्या कर सकते हैं? या फिर उसकी दूसरे सूरत हाल ये देखिए कि कोई पुलिस ऑफिशियल आपके खिलाफ ऑपोजिशन से मिलकर आपको अजियत देने के लिए आप पर अगर झूठा केस अगर बनवाए, या फिर आपको हिरासान करने की कोशिश करे झूठे दफात झूठे मुकदमे डालकर, तो आप अपना किस तरीके से दिफा कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि आप एफआईआर लॉन्च किस तरह करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक कंप्लेन लेटर दीजिए पुलिस स्टेशन में, अगर वो करप्ट होगा तो पहली बात तो आपको मना कर देगा। तो आपको करना ये होगा, आपके करीबी पोस्ट ऑफिस को जाइए, जा करके आप वहाँ से एसपीएडी कर सकते हैं, जो कि पहले आरपीएडी था, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो अब वो स्पीड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू हो गया है। अब वहाँ से जाकर विथ एक्नॉलेजमेंट आप पोस्ट करिए, और पोस्ट करने के बाद आपकी कंप्लेन वहाँ पर चले जाती है और आप ऑन रिकॉर्ड आपकी कंप्लेन आ जाती है। अब उसके बाद सेकंड, आप जब भी बात नहीं बनी तो फिर आप जा सकते हैं एसीपी ऑफिस को, आप डायरेक्ट या पर्सनल विजिट कर सकते हैं या तो कंप्लेंट कर सकते हैं, जब तो बात बन जानी ही चाहिए। अगर तब भी बात ना बने तो फिर कहाँ जाए? तो फिर जाए डीसीपी ऑफिस और अपना जो भी कंप्लेन है वहाँ पर करें और एक्नॉलेजमेंट लें। अगर आप पर्सनल विजिट नहीं कर सकते तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप पोस्ट कर दें। उसके बाद जब भी बात ना बनी तो फिर आप सीपी ऑफिस जाए। उसके बाद तब भी बात ना बने तो पूरे एक्नॉलेजमेंट्स ले और सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंडर आप प्राइवेट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं डायरेक्ट कोर्ट में, यानी कि डायरेक्ट कोर्ट से आप रिफर करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई आप किस तरीके से कंप्लेन करेंगे, आपको कोई किस चीज़ का अगर ग्रीवेंस या ऑब्जेक्शन हो तो। अब हम आते हैं हमारे अगले मौजू की तरफ, इसी के अंदर अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा डालें तो सबसे पहली बात तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलिए, आईओ जिसे कहते हैं, मिलकर पूरी अपनी तफसीलात बताइए ताकि उसको इन्वेस्टिगेट करने में आसानी हो, और अगर आप उसे कन्विंस कर देंगे तो एफआईआर आपके होने के बावजूद वो आप पर चार्जशीट दाखिल नहीं करेगा, बल्कि चार्जशीट के बजाय वो क्लोजर रिपोर्ट कर देगा। इसका बुनियादी ढांचा होता यूं है कि पहले कंप्लेन, पहले जीडी एंट्री एंड कंप्लेन होती है, फिर एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद 2-3 महीने का टाइम लेता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है, फिर अगर वो कन्विंस हुआ कि आपका मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो फिर चार्जशीट फाइल करता है। अगर उसे ऐसा लगा कि ये जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल बेबुनियाद है या लैक ऑफ एविडेंस है या सिविल इन नेचर है, तो वो आपकी बात सुनकर आप अपने ऊपर चार्जशीट फाइल करने के बजाय क्लोजर रिपोर्ट फाइल करवा ले सकते हैं। क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने का मतलब ये होता है कि अब केस इससे आगे नहीं चलेगा, यानी चार्जशीट फाइल होगी तो चार्जशीट फाइल होगी, फिर ट्रायल चलेगा, फिर जजमेंट आएगा, जजमेंट आने के बाद फिर एक्विटल या कन्विक्शन, यानी बाइज्जत बरी या फिर कसूरवार मान के उसे बामशक्कत कैद की सजा सुनाई जाएगी। बट यहाँ पर समझ में आने वाली बात यह है कि अगर क्लोजर रिपोर्ट अगर पुलिस की तरफ से दाखिल हो जाती है तो फिर वो केस आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो केस वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो संजीदगी से आप आईओ से मिलिए और अपना केस ख़त्म करवा सकते हैं, और उसके अंदर आप अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं अपनी, या फिर आप एक बेसिक सा एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और अपना वर्जन सुना सकते हैं, सुनाकर बात को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, अब आप पे चार्जशीट भी फाइल हो गई या चार्जशीट फाइल होने वाली है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कन्विंस ना हुआ, तो आप फाइल कर सकते हैं डायरेक्ट लोअर कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन या हाई कोर्ट में क्वैश पिटीशन। उस अर्जी में, उस पिटीशन में आपका जो इख्तिबासात है, आपका जो नजरिया है और आपके जो बेगुनाही के सबूत है या गवाहान है, उसको आप दाखिल कर सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं जज को। अगर जज कन्विंस हो जाए और आप वाकई बेकसूरवार हो तो फिर आपको वहाँ से इंसाफ मिलेगा, वहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा, ख्वा वो लोअर कोर्ट से हो या फिर हाई कोर्ट से हो, फिर वो ऑर्डर कॉपी आपको
सिर्फ करना कुछ नहीं है, ले जाकर जो आप मुकदमा जिस अदालत में चल रहा है उस अदालत में फिर एक अर्जी देकर के उनके इल्म में लाया जाए।

कि ये केस ख़त्म हो चुका है, वो ऑर्डर कॉपी एनक्लोज करें, फिर आपका वहाँ से केस ख़त्म हो सकता है। तो अब चार्जशीट की जहाँ तक सवाल है, चार्जशीट कब फाइल होती है, इसके अंदर कोई ऐसा एक टेन्योर नहीं है। अक्सर आवाम मुंतशिर रहती है कि चार्जशीट कब फाइल होगी, कब फाइल होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, जैसा कि हम कई ऐसे केसेस देख सकते हैं जो कि आज से 10 साल पहले FIR तो हुई, ना आज तक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई, ना आज तक चार्जशीट दाखिल हुई। तो चार्जशीट और FIR के बीच का जो वक्फा होता है वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का एक स्टेज होता है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है अपने प्रोसीडिंग्स को और अपने कार्रवाइयों को आगे बढ़ाती है। अब थोड़ा और इससे अलग एक नज़रिए से देखते हैं कि गिरफ्तारी के कवानीन क्या है और कैदियों के हुकूक क्या है और ट्रायल कैसा चलता है, गवाह और सबूत की कितनी अहमियत है। जैसे जांचा परखा जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट BSA, भारतीय संहिता अधिनियम, और अरेस्टेड पर्सन्स के यानी जिसे हिरासत में लिया जाए उस अफराद के आईनी और फौजदारी हुकूक क्या है। सबसे पहली बात तो एक आईनी हुकूक हम कैदियों के ऊपर देखेंगे कि डबल जपर्डी यानी दोहरी सजा से तहफ्फुज़, कोई शख्स एक गलती के लिए दो बार सजावार नहीं हो सकता। दूसरा हक हम देखेंगे जिंदगी व आज़ादी का हक, आर्टिकल 21 हमें आज़ादी का हक देता है, जिंदगी की आज़ादी और हक की आज़ादी। गिरफ्तारी किस वजह से हुई उस जानने का हक कैदी को है, वकील से मुलाकात का हक है, जमानत का हक है और जमानत यानी बेल का हक है, खामोश रहने का हक है यानी कि कोई भी ओहदेदार आपको जबरन आपसे किसी भी चीज़ का कन्फेशन नहीं करवा सकता, और 24 घंटे में अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हक है। तो अगर ये कोई भी हकूक में से एक भी हक आपका पामाल होता है तो आप डायरेक्ट रुजू कर सकते हैं हाई कोर्ट को और अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हैं और इंसाफ ले सकते हैं। तिब्बी और मेडिकल जांच और मुफ्त कानूनी इमदाद, जी हाँ, तिब्बी इमदाद और मेडिकल जांच जिसे MLC कहते हैं और मुफ्त कानूनी इमदाद यानी के फ्री लीगल एड। अगर आपकी या कोई भी कैदी की अगर कोई मिजाज नासाज है और वो उसके सेहती मसाइल से अगर जूझ रहा है तो वो अपने लिए तिब्बी इमदाद के लिए बिल्कुल पूछ सकता है और मेडिकल जांच उसकी करवाई जाती है वही पुलिस ऑफिशियल्स के तरफ से, जिसको देखा जाता है मेडिकल ऑफिसर जो भी इलाके का हॉस्पिटल होता है। और मुफ्त कानूनी इमदाद, अगर ये कानून सिर्फ अमीरों के लिए, रुआसा के लिए नहीं बल्कि गुरबा व मसाकिन और गयूर आवाम के लिए भी है, जिसमें कानूनी इमदाद आपको गवर्नमेंट के तरफ से भी यानी सरकारी वकील भी आप खुद ले सकते हैं और उससे अपना केस लड़वा सकते हैं। अब कैदियों के अंदर खवातीन के खसूसी हुकूक, खवातीन की गिरफ्तारी अमूमन सूरज गुरूब के बाद नहीं हो सकती। खवातीन से सिर्फ खवातीन ओहदेदार व अफसरान ही जांच पड़ताल पूछताछ कर सकते हैं। कुछ जिंसी हिरासानी केसेस में खातून की पहचान जाहिर ना किया जाए, जी हाँ, जो कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसा के होते हैं, अगर कोई एक सेक्सुअल हेरासमेंट की कोई खातून है और वो कंप्लेनेंट है तो उसका हक है कि उसकी पहचान नुमाया ना किया जाए और जो मुजरिम है उसके ऊपर ट्रायल भी चलाया जाए और बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लागू होगा। अब हम आगे चलते हैं सिविल लॉ की तरफ, जिसे दीवानी कानून कहते हैं, जो मुश्तमिल है हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर। ये कानून में जायदाद व जमानत के झगड़े, विरासत के झगड़े, कर्ज की वापसी और माहदे की खिलाफ वर्जी और दुकानदार व खरीदार के झगड़े और किराएदार व मकानदार के तनाज़े और इससे मुताल्लिक जितने भी गैर फौजदारी उमूर है और तनाज़ात है इससे हल किए जाते हैं। दीवानी मुकदमात में एक खासियत है, इसमें अक्सर हक दिलाया जाता है, सजा नहीं दी जाती, सिवाय कुछ के, जैसा कि STCNI है चेक बाउंसर्स केस में और लैंड ग्रैबिंग केस में, अक्सर में इसमें हक दिलाया जाता है, सजा नहीं मिलती। कानूनी शऊर का मतलब सिर्फ कानून पढ़ना या पढ़ लेना या पढ़ा देना नहीं बल्कि अपने हकूक को पहचानना है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, सही वक्त पर कानूनी इकदाम उठाना एक बाखैर शहरी ही एक मजबूत माशरा बनाता है। एक मजबूत माशरा बनाने के लिए हमें बेखौफ और बेबाक

तरीके से मैदान में उतर कर अपने हकूक को जानना पड़ेगा और अपने हकूक के लिए लड़ना होगा। सबसे पहले तो आप जाने, आप आगाज करें कि कानूनी शऊर का और इल्म जहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले तो आप जाने जो आप इलाके में रहते हैं उस इलाके की मुकम्मल मालूमात, जैसे आपका जो इलाका है वार्ड, वार्ड में क्या वो म्यूनसिपैलिटी में आता है या फिर वो जिला परिषद में आता है या फिर वो GHMC में आता है। अगर कोई भी मसले पेश आए तो हम किस वार्ड मेंबर या कॉर्पोरेटर के तरफ रुजू हो सकते हैं, और जो आप इलाके में रहते हैं उस इलाके का विधायक MLA कौन है, और आपके जो बड़े मसाइल हैं वो किस तरीके से आप हल करवा सकते हैं और रुजू कर सकते हैं, जैसा कि हॉस्पिटल्स का मसला हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्कूल्स का मसला हो, या फिर ड्रेनेज का मसला हो, या और भी कुछ। तो आप इसका इल्म रहना ज़रूरी है। और आपका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी आती है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी आती है, और वार्ड कौन सा लगता है, और आपका लोकल पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, उसका जो आपका इलाका है उसका जो पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ तक होता है, कहाँ तक रहता है, और उसका SHO कौन है, और पुलिस की हायरार्की क्या है। जैसा कि पहले सबसे पहले बात तो आता है होम गार्ड, फिर कांस्टेबल, फिर ASI यानी असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, और फिर सब इंस्पेक्टर, फिर सर्कल इंस्पेक्टर, फिर ACP, DCP, CP। तो आपको पुलिस स्टेशन की खूब जानकारी होनी चाहिए और इनके मुतालिक तमाम दफातर की भी सूझबूझ और मालूमात होनी चाहिए, और पुलिस रैंकिंग हायरार्की मालूम होनी चाहिए, और आपके अपने हुकूक पुलिस के सामने क्या है वो मालूम होने चाहिए। और मैं एक किताब सजेस्ट करूँगा, द पुलिस लॉस। आप सब थोड़ा बहुत इसका भी मुताला ज़रूर कीजिए ताकि आपको पुलिस के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स मालूम हो सकते हैं, और आपके खुद के ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स एंड लिमिटेशंस मालूम हो सकते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि पुलिस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, CRPC एंड CPC ज़रूर एक बार मुताला करिए, और एक मकतब छोटा सा घर में ही रखिए ताकि इन कवानीन के कुतुब अगर घर में रहेंगे तो आपके छोटे मोटे मसाइल में आपको खुद कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप अपने किताब से खुद रुजू हो सकते हैं और आप अपना खुद वकील बन सकते हैं। तो आपको आगे चल के ये मालूम होना चाहिए कि जो भी आपका पुलिस स्टेशन है या इलाका है उसको कौन सा कोर्ट लगता है, अदालत कौन सी लगती है। और जैसा कि इससे पहले मैंने बताया कि आप एक कैदी का हक होता है मुफ्त कानूनी इमदाद, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल अथॉरिटीज, जिसका टोल फ्री नंबर है 1510। अगर आपको समझ में ना आए कोई चीज के इसके प्रोसीडिंग कैसा बढ़ाते हैं, जस्ट आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए, कॉल कर आप अपने कानूनी इमदाद तलब करिए। इम्पोर्टेंट और एक सुनहरा एक फीचर हमारे कवानीन ने हिंद में हमें दिया गया है, जो कि है पार्टी इन पर्सन, यानी कि आप को ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही अपना दिफा सही तरीके से कर सकते हैं या फिर आपको किसी कोई वकील के ऊपर भरोसा नहीं, तो आप खुद अपने में इतनी काबिलियत पैदा कर कर आप खुद अपना केस एज ए पार्टी इन पर्सन भी लड़ सकते हैं। और इन सब मसाइल में जो कोर्ट के अंदर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या आप किसी के ऊपर मुकदमा चला रहे हैं, चाहे ख्वा आप मुद्दई हो या आप मुजरिम हो कानून के नज़र में, तो इन दोनों भी सूरत हाल में सबसे पहली बात तो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन सही करें, दुरुस्त करें, और डॉक्यूमेंटेशन में पढ़े कि कंप्लेन क्या है, FIR क्या है, चार्जशीट किस तरीके से दाखिल हुई है, चार्जशीट में क्या क्या लिखा हुआ है, केस डायरी क्या है, पंचनामा रिपोर्ट क्या है, और लड़ाई झगड़ा या मार धाड़ का केस है तो सामने वाले की MLC क्या है, या फिर कोई केसेस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो वो क्या है। तो उसके लिए आप इन तमाम दस्तावेज आप कहाँ से हासिल करें, तो इसका एक छोटा सा एक तरीका है, आप जो भी कोर्ट में है वो कोर्ट में जाइए, आपको वकील की भी जरूरत नहीं है, कानून ने आपको हक दिया हुआ है, आप जाए जाकर आधार कार्ड की कॉपी एक अपनी इनक्लोज करें, करके आधार कार्ड पर सिग्नेचर अपना मारे, मार कर एक अर्जी दे, वो अर्जी में आप जो भी दस्तावेज आपको मतलूब है उसकी लिस्ट बनवाए, बनाकर वो उनको दे, वो लोग आपसे कुछ वक्त लेंगे, वक्फा लेंगे, और उसके अंदर आपको एक नॉमिनल कोर्ट फी आप पर लगेगी, नॉमिनल कोर्ट फी के अंदर आप ये तमाम दस्तावेज हासिल कर सकते हैं और अपने केस को खुद जान सकते हैं कि आपके ऊपर किस किस तरीके के दफात और इल्जाम लगाए गए हैं, और आपका कलेक्टर ऑफिस कौन सा है ये भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो
پھر ہم ایک بار دہراتے ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کا علم ہونا چاہیے، کہ آپ کا وارڈ ممبر کون سا ہے اور آپ کا

आखा किस में आता है? म्यूनसिपैलिटी में, जीएचएमसी में, जिला परिषद में, और दूसरा विधायक आपका कौन सा है, एमएलए और एमपी यानी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी कौन सी लगती है, और लोकल पुलिस स्टेशन क्या है, आपका किस ज्यूरिसडिक्शन में फॉल होता है, और सीपी, एसीपी, डीसीपी, ये तमाम मुतालिक दफातर आपके कहाँ पड़ते हैं, और तहसीलदार, एमआरओ आपका कौन है, ताकि आपके जमीनी जायदादी कुछ मसाइल है तो आप वहां से कैसे दस्तावेज दाखिल करें और कैसे अपने सिविल प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने में आपको मदद ले, और कलेक्टर की ऑफिस कौन सी होती है। तो इन चीजों का आप जो है मुताला करिए, तहकीक करिए, और अब हम आगे चलते हैं कि मुख्तलिफ महकमे और खलम रू ए बाला दस्ती के आलाकार कौन है, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे कोई खवातीन और बच्चों पर ज्यादती देखे तो आप वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से रुजू हो सकते हैं, ख्वाह हो तहरीरी हो या टोल फ्री के जरिए। और टोल फ्री जैसा कि वुमेन हेल्पलाइन है 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, महकुमा है तहफुज़ ग़िज़ायात, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाएं और सफाई की कमी, गैर मियारी गिजा या कोई और नागवार सूरत हाल पेश आए तो आप FSSAI से रुजू कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर इसके टोल फ्री नंबर 1800-112-100 पर कॉल कर कर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आप देखें कि जानवरों के ऊपर कोई शिद्दत या फिर ज्यादती उन पर हो रही है तो आप डायरेक्ट पीटा या एनिमल डिपार्टमेंट को आप कॉल कर सकते हैं और उनके तरफ रुजू हो सकते हैं, या फिर आप देखें कि कोई वाइल्ड एनिमल्स जो कि जंगली जानवर जिसे कहते हैं, अगर उनके मुताल्लिक कोई ज्यादती का मसला पेश आ रहा है तो आप डायरेक्ट फॉरेस्ट एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रुजू हो सकते हैं। और भी मसाइल जैसे बिजली का मसला हो तो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को रब्त कर सकते हैं, या फिर उसके टोल फ्री नंबर पर 1912 पर कॉल कर सकते हैं। मेरा तो मशवरा यह है कि आप जिस भी महकमे से रुजू कर रहे हैं वहाँ के कुछ आलेकारों का पर्सनल नंबर ले लेकर अपने मसाइल को उनके तरफ पेश करें और मसले को हल करने की कोशिश करें। और भी जैसे पुलिस महकमे का एक इमरजेंसी नंबर है 100, जैसा कि आप सबको मालूम है, छोटे बच्चे को भी मालूम है, बट इसके अंदर आप देखेंगे कि जब भी आप 100 पर कॉल करते हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है कॉल सेंटर को, कॉल सेंटर से फिर पीएस को कनेक्ट होता है। तो एक और एक नंबर है जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं, 112, ये जो है 100 से भी ज्यादा इमरजेंसी नंबर है। इसके अंदर भी आप कोई मसला हो तो आप डायरेक्ट 112 से भी रुजू हो सकते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे तरफ से यह है कि आप लोकल पुलिस स्टेशन का लैंडलाइन नंबर ले लें, वो लैंडलाइन नंबर अपने पास रखें। अगर आपको कोई मसला, कम से कम अपने घर के अतराफ व अतनाफ के 2-3 पुलिस स्टेशन का, अगर आपको कोई मसला है, इमरजेंसी है पुलिस की, तो आप कम से कम 100 के बजाय उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें, या फिर पुलिस ऑफिशियल का कोई नंबर ले लेकर उस पर कॉल करें, ताकि आपके मसले को हल किया जाए और आप अपने आप को या अपने अफराद खानदान या दोस्त अहबाब को नुकसान से बचाया जाए। या फिर मोहरियों का मसला हो या कोई ओहदेदार आपको रिश्वत लेने देने पर तंग कर रहा है तो आप रुजू हो सकते हैं ACB करप्शन ब्यूरो को। डायरेक्ट आप करप्शन ब्यूरो में उसकी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, जिससे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और भी टोल फ्री नंबर जैसे एम्बुलेंस का 108 है, फायर स्टेशन का 101 है, और भी डिपार्टमेंट्स का अपना एक ज़ाती मुताला करिए डिपार्टमेंट्स पर, और डिपार्टमेंट मुताला करके उनके टोल फ्री नंबर्स और उनके महकमे के अहदेदार के नंबर्स भी कलेक्ट करिए और मसाइल को हल करिए। अब बात करते हैं RTI, एक पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में। RTI का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, मसलन आपका जो काम था वो काम क्यों रुका हुआ है, इसमें इतनी ताखिर की वजह क्या है। मसलन जैसा आपका राशन कार्ड पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है। अगर आप तालिब इल्म हो और आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। किसी के वजीफे का कुछ मसला आ गया तो आप पेंशन डिपार्टमेंट से रुजू कर कर RTI फाइल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस वजीफे के रुकावट की वजह क्या है। अगर आपका कोई काम डिपार्टमेंट में रुका हुआ हो तो आप डिपार्टमेंट को किस तरीके से रुजू करें। सबसे पहले तो तहरीरी तौर पर रुजू हो,
और एक्नॉलेजमेंट लें।

फॉलोअप करें। अगर फिर भी जवाब ना आए और बात ना बनी तो आप RTI फाइल कर सकते हैं। बिजली का बिल गलत आए या बढ़कर आए तो आप सीधा बिजली के महकमे से दरियाफ़ कर सकते हैं RTI के द्वारा कि बिल क्यों बढ़कर आ रहा है और इसका अप्रोप्रिएट बिल एवेल्यूशन क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है और ऐसा क्यों है। कोई और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या रोड या ब्रिजेस या जो भी कुछ है उसका बजट सैंक्शन कितना हुआ और कितना लगा, आप इतना तक RTI के द्वारा पूछ सकते हैं। काम ना हुआ तो काम क्यों ना हुआ और ताखिर हुई तो ताखिर की वजह क्या है, इन तमाम चीज़ों का हल है RTI। आप RTI में ये सब अपने सवालात हुकूमत से दरियाफ़ कर सकते हैं और जिससे करप्शन कम होता है और आवाम का फ़ायदा ज़्यादा होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका इनफरादी फ़ायदा नहीं बल्कि जिससे इज्तमाही मफादात भी वाबस्ता होंगे। RTI भी इस तरीके की ये भी दरियाफ़ कर सकते हैं कि कौन अफसर जिम्मेदार है, फाइल किस स्टेज पर है। याद रखें, जवाब देना हुकूमती इदारों का सिर्फ 30 दिन में ज़रूरी हो जाता है। अहम बात यह है कि सिर्फ हुकूमत इदारों, महकुमा और हुक्काम से ही दरियाफ़ कर सकते हैं, कोई प्राइवेट इदारों पर यह लागू नहीं। अगर कोई सरकारी अथॉरिटी आपके साथ नाइंसाफी करे तो आप चुप रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। अगर किसी को सिर्फ उसकी ज़ात या मजहब या स्टेटस की वजह से नौकरी नहीं दी गई, ये इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है। अगर पुलिस बिना वजह के परेशान करे या फिर कोई भी मसला पेश आए या फिर तासुब भरा कोई मसला हो तो इन तमाम मसलों में भी आप ये RTI एक इम्पॉर्टेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कौम और अपने शहरियों के लिए और हमारे हिंदवासियों के लिए एक नफा बख्श शहरी और नायाब शहरी अपने आप को हमारे देश का सबसे बड़ा कानून ही हमें और हमारी हुकूमत को उसके हिसाब से चलवाता है। पुलिस भी आयन के हिसाब से काम करेगी, कोर्ट भी आयन के हिसाब से काम करेगा और हमें भी आयन के मुताबिक ही काम करना होगा। और अगर आपके कोई भी जमहूरी हक या बुनियादी हकूक़ अगर पामाल होते हैं तो आप याद रखें, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रुजू हो सकते हैं। जैसा कि आपके फंडामेंटल राइट्स हो तो इस जमहूरियत में जितने भी आपको हकूक़ दिए हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि पुलिस महकमा या फिर किसी भी महकमा हुकूमत से अगर आपका हक़ पामाल हुआ तो आपके पास एक पावरफुल टूल रिट का भी सहारा है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, जैसा कि हैबियस कॉर्पस, जिसमें कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको हरास करता है और उसका पावर का मिसयूज़ करता है तो उसके ऊपर आप हैबियस कॉर्पस चला सकते हैं। और रिट ऑफ मैंडमस और रिट ऑफ सर्शियरी, जैसा कि कोई लोअर कोर्ट का कोई फैसला अगर आया और बिल्कुल वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज करवा सकते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो, किसी के पद की लीगैलिटी चेक करना, ये आवाम के लिए सेफ्टी शील्ड है। दोस्तों, कानून से डरना नहीं, कानून का इस्तेमाल करना सीखिए। जागरूक शहरी ही मजबूत मुल्क बनाता है। अगर आप खुद मजबूत होंगे, बाइल्म होंगे तो अपने अफराद ख़ानदान, दोस्त अहबाब, अहलियान मोहल्ला ही नहीं बल्कि अब पूरे देश के लिए और पूरे देशवासियों के लिए नफा बख्श साबित हो सकते हैं और उन्हें इंसाफ दिलवा सकते हैं। आइए हम देखते हैं 5 किस्म के रिट्स को, जो कि बहुत अहम हथियार है एक बाइज्जत शहरी के लिए। जो कोई भी से समझता हो कि उसका जमहूरी हक पामाल हुआ हो तो जो रिट इम्पोर्टेंट रिट है, सबसे पहले जो रिट है हैबियस कॉर्पस, जो डायरेक्ट पहले कोर्ट के सामने पेश होता है। अगर किसी शख्स को गैर कानूनी तरीके से पुलिस या कोई भी अथॉरिटी ने काबू में रखा है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट फाइल की जा सकती है, जिसमें कोर्ट हुक्म देता है कि उस शख्स को फौरन कोर्ट के सामने पेश किया जाए। या फिर कोई भी सरकारी अहदेदार अपने अहदे का गलत फ़ायदा उठाता है तो भी ये आप डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। और रिट ऑफ मैंडमस, जैसा कि हुक्म देना, जब कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक ऑफिसर अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती तो कोर्ट रिट ऑफ मैंडमस के जरिए उस डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटी करने का हुक्म देता है। मसलन, जैसा कि म्यूनसिपल डिपार्टमेंट रोड रिपेयर या सैनिटेशन की जिम्मेदारी अदा ना करे तो आप इस रिट ऑफ मैंडमस के जरिए वो पूरी करवा सकते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रोक लगाना, प्रोहिबिट रोक लगाना से मुराद है जब कोई लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा पावर यूज़ करने लगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन

0: रिविजन जारी करके उसके प्रोसीडिंग्स को रोक सकती है। ये रिट का एक बुनियादी मतलब ये है कि हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट एंड अपेलेट हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट से बड़ा है, ना कि लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट से बड़ा है। तो हाई कोर्ट जो हमारे कोर्ट्स की हायरार्की है, अकॉर्डिंग टू दी हायरार्की जो है कोर्ट्स को काम करना चाहिए। तो ये रिट ट्राइब्यूनल्स और लोअर कोर्ट्स को बेजा इस्तेमाल करने से रोकती है। रिट ऑफ सर्शरी, रिकॉर्ड मंगवाना और ऑर्डर कैंसिल करना। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल का रिकॉर्ड मंगवा कर उसका गलत ऑर्डर या डिसीशन कैंसिल कर सकता है अगर वो इलीगल या जुरिस्डिक्शन या लॉ के खिलाफ हो। तो लोअर कोर्ट ने प्रोसीजर फॉलो किया बिना जजमेंट दे दिया तो रिट ऑफ सर्शरी इधर लागू होता है। रिट ऑफ को वारंटो, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट रिट किस अथॉरिटी से। ये को वारंट एक लीगल, एक लैटिन लैंग्वेज से टर्म डिराइव हुआ है। अगर कोई शख्स गवर्नमेंट पब्लिक पोस्ट पर गैर कानूनी तरीके से बैठा हो तो कोर्ट उसे पूछता है कि किस अथॉरिटी से वो पोस्ट होल्ड कर रहा है। एग्जाम्पल, कोई बंदा क्वालिफिकेशन के बगैर गवर्नमेंट पोस्ट ऑक्यूपाई कर ले, या फिर वो उस चीज़ का एलिजिबल ही ना हो और वो उस पोस्ट पर आ जाए, तो ये रिट वहाँ पर उसे एक चैनलाइज करता है। और एक आपके बुनियादी हकूक की जितनी भी खिलाफ वर्जी हो, ये जो रिट्स है आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट में अपना रिट दायर कर सकते हैं और 226 में सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट रुजू हो सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपका उसमें जमहूरी हक या बुनियादी हकूक वाकई पामाल हो। सिविल मैटर्स में या कोई और मैटर्स में ये इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कम ही आपको कमज़ोर ही पाएगा। अगर आपके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो तो हाई कोर्ट से आप आर्टिकल 33 और सुप्रीम कोर्ट से 226 से ये लीगल रेमेडी आप हासिल कर सकते हैं। 5 रिट्स के जरिए आपको इंसाफ मिला जा सकता है। आप सुन रहे थे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, कानूनी शऊर बेदारी और आवाम के बुनियादी हकूक, आकाशवाणी हैदराबाद से। तो आप अपना वकील खुद बने। कानून का इल्म सिर्फ वकीलों के लिए नहीं बल्कि हर शहरी के लिए ज़रूरी है। जब आवाम को अपने हकूक कवानीन का इल्म होता है तब एक इंसाफ पर मबनी मुआशरा तश्कील पाता है। आप अपने हकूक जानिए और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी मदद लेने से हिचकाइए मत। कानूनी शऊर एक ताकत है। अपने हकूक को जानिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और एक बेहतर माशरा बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए। अगर किसी इदारे की तरफ से नाइंसाफी हो या कोई कानूनी मसला पेश आए तो खामोश रहना ज़रूरी नहीं। कानून आपको आवाज़ उठाने का हक देता है। कानून के रास्तों को समझिए और इस्तेमाल कीजिए। इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपने हकूक से बाखबर रहिए और कानून का एहतराम कीजिए।
1: तो सामीन, आपने सुना कानूनी शऊर सिर्फ वकला या कानून के तालिबे इल्मों के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि हर शहरी के लिए ज़रूरी है। अपने बुनियादी हकूक़ से वाकिफ होना और अपने कानूनी फ़राइज़ को समझना एक बाशूर और ज़िम्मेदार शहरी की अलामत है। अगर किसी शहरी को अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी हो, पुलिस में शिकायत दर्ज करानी हो, FIR के सिलसिले में दुश्वारी पेश आ रही हो या किसी झूठे मुकदमे का सामना हो, तो उसे घबराने के बजाय कानून के दायरे में रहते हुए मुनासिब कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर किसी मुस्तनद कानूनी माहिर से मशवरा लेना चाहिए। आज की गुफ्तगू का बुनियादी पैगाम यही है कि अपने हकूक़ को जानना, अपने फ़राइज़ को समझना और कानून का एहतराम करना ही एक मजबूत और बाशऊर माशरे की बुनियाद है।

बात को आवाज देती है, एहसासात को नगमों में ढाल देती है और जिंदगी के हसीन लम्हात को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। लेकिन एक खूबसूरत और खुशगवार जिंदगी के लिए सिर्फ दिल का खुश रहना ही काफी नहीं, जिस्म का सेहतमंद और तवाना होना भी जरूरी है। इसलिए आज की इस खुसूसी पेशकश में हम मौसीकी के साथ एक निहायत अहम मौजू को भी आपके साथ बांट रहे हैं और वो है नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी कौमी गजाइत हफ्ता। यह हफ्ता हमें याद दिलाता है कि हमारी सेहत का ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा खुराक से बहुत गहरा है। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और किस अंदाज से अपनी गजा का इंतखाब करते हैं, ये सब हमारी सेहत पर असरअंदाज होता है। शेर मुलाहजा कीजिए कि सेहत है तो जिंदगी में हर रंग है हसीन, सेहत है तो जिंदगी में हर रंग है हसीन, बीमार हो तो दुनिया भी लगती है बेरंगो गमगीन। तो आइए सेहत, खुशी, ताजगी और मौसीकी के इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं एक दिलकश फिल्मी नगमे के साथ।

सामीन, ये आकाशवाणी हैदराबाद का प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जाए, और आज की इस खुसूसी महफिल में खूबसूरत नगमों के साथ नेशनल न्यूट्रिशन वीक का सेहत बख्श पैगाम भी जारी है। सामीन, कुदरत ने हमारे लिए ग़िज़ाओं की एक ऐसी खूबसूरत दुनिया बनाई है जिसमें हर रंग, हर जायके और हर मौसम के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है। फल, सब्जियां, दालें, अनाज, दूध, दही और दीगर कुदरती ग़िज़ाएं हमारी रोज़मर्रा खुराक को मुतवाजन बनाने में अहम किरदार अदा करती है। मौसमी फल और सब्जियां न सिर्फ जायके में बेहतरीन होती हैं, बल्कि हमारी खुराक में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा शामिल करने का ज़रिया भी बनती हैं। इसलिए अपनी प्लेट को मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से सजाइए। शेर मुलाहिज़ा कीजिए, फलों की ताज़गी हो, सब्जियों की बहार हो। फलों की ताज़गी हो, सब्जियों की

बहार हो, ऐसा हो दस्तरखान तो सेहत भी बरकरार हो। तो आइए ताजगी और खुशी के इसी एहसास के साथ सुनते हैं एक सुरीला नगमा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद का प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, जहां मौसीकी के साथ नेशनल न्यूट्रिशन वीक का पैगाम भी आप तक पहुंचाया जा रहा है। सामीन, आज के दौर में फास्ट फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, मीठे मशरूबात और बहुत ज़्यादा तली हुई ग़िज़ाएँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। उनका ज़ायका यकीनन हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, लेकिन सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि हम ज़ायके और सेहत के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम रखें। खाने का मकसद सिर्फ ज़बान को खुश करना नहीं, बल्कि जिस्म को ज़रूरी तवानाई और ग़िज़ाइयत फराहम करना भी है। इसलिए ताज़ा, कुदरती और मुतवाज़न ग़िज़ाओं को अपनी रोज़मर्रा खुराक में ज़्यादा जगह देना एक अच्छी आदत है। एक शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि ज़ायका चंद लम्हों का, सेहत उम्र भर की है। ज़ायका चंद लम्हों का, सेहत उम्र भर की है। सोच कर खाओ ए दोस्त, ये ज़िंदगी बड़ी प्यारी है। और अब ज़ायके से सजे एक और नगमे का लुत्फ़ लीजिए। आइए सुनते हैं।

0: बड़े ताबां बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, शहर की राह तक ना ताशहर आसान नहीं होता। जिंदगी में अजीम कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ सलाहियत काफी नहीं बल्कि सब्र, साबित कदमी और कुर्बानी भी जरूरी है। जो लोग रोशनी बनकर दूसरों का रास्ता रोशन करते हैं, इन्हें भी आजमाइशों, नाकामियों और तकलीफों से गुजरना पड़ता है। जिस तरह रात भर जाग कर ही शहर का इस्तकबाल किया जा सकता है, इसी तरह मंजिल तक पहुंचने के लिए मुसलसिल मेहनत और इस्तकामत दरकार होती है। बड़ी कामयाबियां बड़ी कुर्बानियों का तकाजा करती हैं। आजमाइशों से घबराकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सब्र करने वालों ही को कामयाबी की रोशनी नसीब होती है। अंधेरी रात के बाद ही रोशन सुबह तुलू होती है। जो शख्स मुश्किलात के अंधेरों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, वही आखिरकार कामयाबी की सहर का नजारा करता है।
1: तो सामीन, अभी आपने पयाम शब जनाब जैदी साहब की आवाज़ में समात फरमाया। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान मशकूर अहमद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और तवज्जो का बेहद शुक्रिया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयास

0: का भी आह्वान किया है जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। कल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
2: Mr. Modi said India had proposed The Shanghai Cooperation Organization civilized

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aap sabka swagat hai. स्टूडियो में आज श्रोताओं चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आपका
0: वार्म वेलकम.
2: जी शुक्रिया. थैंक यू.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस.
0: इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट. निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स. ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपीज इन ऑगस्ट दिस ईयर. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज सेंसेक्स सपाट बंद हुआ.

वहीं निफ्टी 25 अंक नीचे आया। कुल जीएसटी संग्रह अगस्त माह में लगभग 15% बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं अब जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 13 अंक फिसलकर 76,944 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25 अंक लुढ़ककर 24,056 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 1.5%, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले भू राजनीतिक तनाव के बीच बाजार गिरावट के साथ खुले, लेकिन शुरुआती नुकसान से उबरकर सकारात्मक दायरे में आ गए। हालांकि सत्र के दूसरे भाग में बाजार ने बढ़त गंवा दी, साथ ही निफ्टी वायदा और विकल्प की साप्ताहिक समाप्ति ने उतार चढ़ाव को और बढ़ा दिया।
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower today. The Sensex declined 13 points to close at 76,944. The Nifty dropped 25 points to settle at 24,056. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell 1.4%, while the Small-Cap 100 Index dipped over 0.2%. Earlier, the markets opened lower amid ongoing geopolitical tensions but recovered from their initial losses and turned positive. However, they failed to sustain their upward momentum during the second half of the session, with the weekly expiry of Nifty futures and options contracts adding to the volatility.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में मारुति 4.2%, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिगो और बजाज फिनसर्व में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत आईटीसी 4%, एचसीएल टेक 3.2% और इन्फोसिस में 2.5% से अधिक का उछाल आया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, auto declined 1.4%, consumer durables over 1.2%, and telecommunications as well as realty dipped over 1%. In contrast, information technology rose over 1.2%, focused IT gained 1.2%, and energy added over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,563 companies declined, 1,760 advanced and 236 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 22 पैसे मजबूत होकर ₹94.95 पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, आज की अगर चाल देखें बाजार की, तो इसे आप कैसे देखते हैं? एकदम सीधे सवाल से कार्यक्रम शुरुआत करते हैं।
2: देखिए, बाजार में जो रुख है, खास करके जो एक कंसोलिडेशन का रुख है
1: जी,
2: जो इन्वेस्टर है वो कोई मेजर मूव नहीं लेना चाहता, यहीं पे कंसोलिडेट करना चाहता है या फिर जहां पे प्रॉफिट आ रहा है उसको थोड़ा बुक करके या फिर किसी और स्टॉक में जहां पे कुछ मुनाफे के चांस बन सकते हैं तो उसमें खरीदारी करना चाहता है। तो एक कोई मूव, जैसे एक मेजर इन्वेस्टमेंट मूव
1: जी,
2: ऐसा कोई बाजार में रुख नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज जो है ग्लोबल लेवल की, एक तो क्रूड प्राइसेस जो एक मेजर अनसर्टेनिटी है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, अगर वापस एक यूएस और ईरान में एस्केलेशन आती है तो प्राइसेस जंप ले सकते हैं, जिसका सीधा असर जो है एनर्जी प्राइसेस के ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर जाएगा। और फिर दूसरा जो बॉन्ड यील्ड, जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में एक राइज है जिसकी वजह से कंपैरेटिवली जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होती है, तो वो एक कारण है। और तीसरा जो एक अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल लेवल पे, जो चाहे आप ग्रोथ

0: को लेके कहें या दूसरे फैक्टर जो है जो वॉर रिलेटेड हेडविंड्स है, और जो अभी रशिया और यूक्रेन में भी एस्केलेशन हुई है कुछ युद्ध में, तो ये सभी फैक्टर जो है मार्केट के सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जो देखा जाए अगस्त के महीने में काफी तेज जो है इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, एफआईआई का काफी फ्लो आया है, तो कुल मिला के जो इंडिया की जो स्थिति है मार्केट की उसको मैं एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहूंगा कि इन्वेस्टर नेगेटिव भी नहीं है और वो कोई मेजर मूव भी आगे नहीं लेना चाहता बिकॉज ऑफ द हेडविंड्स।
1: लेकिन हमने पिछले तीन हफ्ते में लगातार देखा कि मार्केट जो है एक तरीके से स्लाइड डाउन ही करता हमें नजर आ रहा है।
0: देखिए उसमें क्या है, पहले इसी तरीके से मार्केट ने थोड़ी बढ़त भी ली थी, तो कुल मिला के जो रेंज है मार्केट की, जैसे मैंने पहले भी अपने इसी कार्यक्रम में बताया था कि अभी हम पिछले एक साल से लगभग देख रहे हैं कि जो मार्केट की रेंज है वो लगभग कोई 23,500 से लेके 25,500 तक 2000 के पॉइंट, और बीच में जो मेन जो 1000 का जो मूवमेंट है जो लगभग कोई 24,000 23,500 24,000 के बीच में मार्केट जब ऊपर जाती है 24,500 के आसपास तो एक मुनाफा वसूली आती है, क्योंकि मार्केट को कोई और आगे एक ऐसी ब्रेक थ्रू नहीं मिलती बिकॉज ऑफ द ग्लोबल हेडविंड्स, और जब मार्केट डिसेलरेट करती है तो उसको सपोर्ट मिल जाती है बिकॉज ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो ये एक ऐसा रुख बना हुआ है, जब ऊपर जाती है तो ग्लोबल फैक्टर्स सामने आते हैं, ग्लोबल कोई जो रिस्क हैं जो अनसर्टेनिटीज हैं वो मार्केट के सेंटीमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, और मार्केट नीचे कोई डीप करेक्शन में भी नहीं जाना चाहती बिकॉज वी आर फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। हमारा चाहे वो कोई भी नंबर हो, हमने जीडीपी नंबर्स हो, जैसे हम पहले कई हर एक बार हम बात करते हैं कि अवर जीडीपी इज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और दूसरे जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग है और एक्सटर्नल सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट उनके साथ भी ऐसा कुछ कंप्रोमाइज नहीं करके मार्केट डिसेलरेट हो या डीप करेक्शन में जाए ऐसा भी नहीं है।
2: ओके डॉक्टर शर्मा, यू मेंशन द जीडीपी ग्रोथ, वी हैड अ स्ट्रांग जीडीपी ग्रोथ नंबर 7.8%, इवन दैट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू अ क्लियर रैली टुडे। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हाउ मार्केट्स आर प्राइसिंग ग्रोथ वर्सेस रिस्क टुडे?
0: Yes, Mr. Lake, there is no direct correlation between the market rise and the GDP growth because both are the different segments. Markets are on the basis of sentiments and GDP is on the basis of our strong fundamentals. But in the long run, both are very correlated because when GDP grows significantly, like during the last 4-5 years, we observed that GDP is growing more than 7% on an average, 7.5% on an average, and the markets are also in the same move. Markets are increasing significantly year after year. But in the shorter period, on the day-to-day basis, or weekly movements, or the monthly movements, these are not observing. Because as I mentioned to Prachi, that when the markets go up, then they observe the global fundamentals, global uncertainties. When the markets go down, there is some correction because of those negative fundamentals from the global side, then the markets are supported by the domestic fundamentals. Markets don't want to
1: go beyond
0: a line. Markets always remain at a level that this is the level despite the global headwinds, markets should remain here.
2: Okay, point taken. How important are the FII selling pressure and global fund flows in explaining the recent 3+ week underperformance of the Sensex?
0: I don't see FIIs are that much significant now in the recent years because our markets are supported by the retail segment and our DIIs majorly. But the FIIs support the rally. But their contribution or their support or our dependency on them is not that much high, because when the markets go up, markets make new highs or markets are in the strong bull run, then the FIIs also come to invest in India. So FIIs always look at the opportunities because they have the hot money. They invest, then they book profit and they go away. Again they come and they again invest when the market opportunity is there. When there is a great correction, then the FIIs

0: comes to invest in India, because they know about India's story. They know about India's long-term story, that India is a promising growth story. But when they when the markets rise, they observe the global uncertainties, then they book profit. And
1: so how do you view the IT's relative outperformance today, and also that of the banking, which is heavily represented in the index? How do rising oil and potential rate path change feed into credit growth, margins, and asset quality over the next 2 to 3 quarters?
0: Mr. Lake, I would say the sectoral movements are always there. When there is a bull run or the bear run, or the markets are stable, the sectors, sometimes the profit booking happens in one sector, and the people shift from one to another sector to observe the opportunities existing in that particular sector. But the growth, like the bank credit or the other segments, are very strong. Like recently, bank credit is growing in the double digits. And IIP numbers are also very strong at 6.7% for the month of July. Exports are very strong at 13% during the last 5 months, starting from April to July, 4 months. So this double digit trajectory is indicating a strong growth momentum, or the economic momentum in the coming quarters also. So this is the, I believe, fundamental scenario of the Indian economy.
2: Dr. Sharma, जैसा अभी राजेश जी ने भी बताया कि ऑटो सेक्टर को लेकर के, उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर को लेकर के जो आज हमने थोड़ा सा एक उसमें जो गिरावट देखी है, तो इसका कोई विशेष कारण है, या आप जैसा बता रहे हैं कि बस एक रोटेशन है ये ऐसा, या कोई फ्यूचर में कुछ ऐसा?
0: कोई ऐसा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन यूएस में आगे फेड रेट कैसे मूव करता है, वो स्टेबल पॉलिसी स्टांस रखता है या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, वो डिपेंड करेगा. दैट विल बी सम क्रूशल फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर movement in the banking sector or the financial sector, because when they increase the interest rate, then there are expectation that if inflation goes up, then that happens in other countries also.
2: तो आपके लिहाज से अभी अगर हम एक आम निवेशक की तरफ से अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कौन से ऐसे प्रमुख आपकी नजर में जो हों, जो सेक्टर्स हों, जो क्षेत्र हों जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट करना जहां पर समझदारी मानी जाएगी आज की तारीख में, जबकि हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली चीजें जो हैं काफी अस्थिर हैं, तो ऐसे में आप कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बताना चाहेंगे अपनी तरफ से?
0: देखिए, वैसे तो प्राची, जैसे मैं बताता हूँ, इंडिया इज अ प्रॉमिसिंग स्टोरी. इंडिया में ही इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी चीज है, और उसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जो मेन ग्रोथ सेंट्रिक सेक्टर्स हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर एक भारत की जो विकसित भारत की जो बुनियाद है, विकसित भारत को आगे प्रमोट कर रहे हैं. सो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है. इसके अलावा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, सरकार ने कितनी मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स की हैं, पीएलआई स्कीम दी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर रिफॉर्म्स हो रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा डबल डिजिट में ग्रो भी कर रहा है अभी, और एक्सपोर्ट्स बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर ऑल्सो वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. देन द बैंकिंग, देन एनर्जी सेक्टर, ऑल दी सेक्टर्स आर आई बिलीव वेरी स्ट्रांग part of our growth trajectory.
1: So if we were to look at the geopolitical scenario, if Iranian barrels are further squeezed out of the market, how large an incremental supply shock are we talking about, and who are the marginal buyers and sellers who would be adjusting?
0: I think the major markets, the major emerging economies are in the major limelight, actually. They are the stakeholders in the buying and selling segment. But the monopolistic powers sometimes used and are in their vested interests, that is impacting the whole trajectory of the world natural resources. But I would say there must be a great balance between the such things.
2: पिछले महीने वस्तु और सेवा कर के संग्रह में वृद्धि

0: हुई और ये 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले सालाना आधार पर 14.8% की बढ़ोतरी है। वित्त मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कुल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,37,249 करोड़ रुपए रहा, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 9.3% अधिक है। आयात से होने वाला जीएसटी संग्रह 29% बढ़कर 62,604 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे कुल मासिक संग्रह को बढ़ावा मिला। डॉक्टर शर्मा, आंकड़े तो काफी लुभावने हैं, अच्छे आए हैं। क्या ये इंगित करते हैं कि आने वाला जो तिमाही का जो परिणाम जो हो सकता है वो शायद बेहतरी की तरफ ही हो?
1: जी बिल्कुल प्राची, देखो जीएसटी एक सप्लाई साइड इंडिकेटर है जो बताता है कि जो हमारी सप्लाईज हैं वो इंटैक्ट है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड हो रही हैं, अवर प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर इंक्रीजिंग। और दूसरा डिमांड साइड फंडामेंटल्स, जैसे हमारा ऑटो सेल्स हो गया या फिर हमारी एफएमसीजी की ग्रोथ होगी, उससे पता चलता है कि हमारी डिमांड स्ट्रांग है। तो ये इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि ये जो महीने हैं जुलाई अगस्त सितंबर, दीज आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। हमें अगस्त तक का तो पता चल ही रहा है कि जीएसटी नंबर्स आर वेरी स्ट्रांग। अभी एक्सपोर्ट का डेटा आएगा, उसमें भी हम पॉजिटिव हैं कि बहुत अच्छा एक्सपोर्ट नंबर भी आएगा हमारा, जैसे पहले 13% का भी हो चुका है। और इसके अलावा जो आईआईपी नंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि 6.7% पे आईआईपी जुलाई में ग्रो किया है
0: जी।
1: और अगस्त में भी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो ये जो जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है, इसके इंडिकेटर भी जो काफी स्ट्रांग है, तो ये इनसे जो हमारा क्वार्टर टू के नंबर्स आएंगे जीडीपी के, वो भी काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। यहां से ये हम एक इंडिकेशन है कि वी आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली,
0: पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल रहा है।
1: एटलीस्ट हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ बनेगा इस वर्ष के लिए 26-27 के लिए, वो 7% से ऊपर ही रहना चाहिए।
0: जी। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं विकास की गति 5 साल के निचले स्तर पर आ गई। आज जारी की गई एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने जुलाई में ये सूचकांक 53.5 से गिरकर

0: के कारण अगस्त में रोजगार में मामूली गिरावट देखी गई, जो 2.5 साल में पहली बार हुआ है। तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है इसको?
1: देखिए, इसमें प्राची ऐसा है कि जो ग्लोबल लेवल पे हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन आना स्वाभाविक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म वी आर वेरी स्ट्रांग, जो शॉर्टर टर्म ऐसी फ्लक्चुएशन होती है वो सेंटिमेंटल होती है, तो उसी की वजह से फंडामेंटल्स में भी मामूली तौर पे कई बार शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आती है। लेकिन जैसे आपने बताया, हमारा जो पीएमआई इंडेक्स है अभी भी जो एक बेंचमार्क है जो 50 अंक का, उसे कहीं ज्यादा
0: ऊपर है जी।
1: और मैन्युफैक्चरिंग में ही जैसे आपने बताया कि अभी भी काफी ऊपर है, अगर चाइना तो 50 से नीचे फिसल चुका है। इसी सब मंदी के दौर को देखते हुए जो चाइना का पीएमआई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो 50 से नीचे है, लेकिन हम काफी ज्यादा ऊपर है 50 से। तो एक ऐसी स्थिति में वी आर डूइंग वेरी गुड कंपैरेटिवली ग्लोबल लेवल पे भी, ये ग्लोबल इंडेक्स है। तो मैं समझता हूं कि ये एक दो महीने की या कुछ ही देर की बात है, जब तक ये कुछ सेटलमेंट होगा, जब वेस्ट एशिया क्राइसिस सेटल होगा, दिस विल अगेन बिकम वेरी रोबस्ट इन द कमिंग मंथ्स।
2: Moving on, India is preparing further customs and banking reforms, including risk-based import screening and a high-level review of the banking sector's role towards building a developed India. In an interview to a news agency on the sidelines of the G20 finance ministers' meeting in Nashville, Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman said the next phase would build on changes already made in direct and indirect taxation. Sitharaman also stated that the government is working to make the movement of imported goods through Indian ports more seamless. In this regard, a key proposal involves deploying scanners and concentrating checks on high-risk importers. The approach would allow customs authorities to focus their scrutiny on higher-risk imports while facilitating faster clearance in other cases. Sitharaman said confidence in the Indian banking system was reflected in foreign deposits and investments made by Indians living overseas. The indicators showed a positive story about trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. Now, that last line is extremely important, Dr. Sharma, that the story is very positive because it talks about the trust in Indian banks and the country's macroeconomic position. And on top of that, the reforms that the minister is talking about will certainly boost the banking sector.
1: Yes, because reforms are very, very, very crucial for the growth of the economy, and government has undertaken many reforms, plethora of reforms during the last many years, particularly during the COVID and in the post-COVID years. That's why we are becoming more and more resilient, and our numbers, like the GDP numbers of first quarter at 7.8%, are now indicating that reforms are becoming visible, and this is the effect of effective and meaningful reforms undertaken by the government.
0: आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों में है। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है और मौसमी कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के जरिए बफर स्टॉक को चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रक भेजे गए हैं, जिससे 19 शहरों में खुदरा बाजार में हस्तक्षेप के प्रयास काफी बढ़ गए हैं। और अब जान लेते हैं एशियाई बाजारों के हाल। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज 0.2% से अधिक बढ़ा और जापान के निकेई सूचकांक में 0.1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
2: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे एज द रिजम्पशन ऑफ फाइटिंग बिटवीन द यूएस एंड ईरान इन वेस्ट एशिया रिन्यूड फियर्स ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस। Brent crude was trading 1.5% up at $91.88 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.1% higher at $87.54 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, with Brent, with these figures that I just read out, what is your base case oil price range for Q4 2026 if you

0: U.S. pressure on Iran intensifies?
1: Mr. Lake, I think nobody can predict the prices for in such a scenario. But if the escalation comes next time, then I would say prices can go past 100 per barrel in the international market.
0: Okay.
1: Yeah.
2: आगे बढ़ते हैं. सर्राफा बाजार में सोना 1.7% की गिरावट के साथ 153,183 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 2.8% लुढ़ककर 230,419 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. डॉक्टर शर्मा, सोने और चांदी को लेकर के खासी दिलचस्पी होती है भारतीय लोगों की, हम लोगों की, तो इसके जो दाम है उस पर मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी.
1: देखिए प्राची, जो सोने के दाम है और या चांदी के दाम है, उन्होंने बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई है इस साल में. अभी हाई किया $5,500 पर ट्रायंस इन इंटरनेशनल मार्केट इन जनवरी फरवरी, और फिर वो 4,000 को भी टच किए. आप देखिए कि कितना बड़ा मूवमेंट $1,500 का एक ऑन्स के मुकाबले में रहा है. लेकिन मैं समझता हूं कि इनका जो इंटरनेशनल मार्केट में एवरेज है फॉर द करंट ईयर, that will be at around somewhere between 4500 to 4700.
2: Current factors aise kya matlab rahe honge jis wajah se, agar main aapse chahun ki aap is par bhi prakash dale.
1: Dekhiye jo factors hain wo ek to buying hai, strong buying by the central banks, and second jo global uncertainties hain, and that create interest for the safe haven. लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन आती है जब जब डॉलर डॉलर मजबूत या कमजोर होता है, क्योंकि डॉलर भी बहुत तेज गति से फ्लक्चुएशन लेता है बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस. तो गोल्ड के प्राइसेस भी उसी तरीके से मूव करते हैं. लेकिन इसका एवरेज जो रहेगा, मैं ये समझता हूं कि $4,500-4,600 पर ट्राई ऑन्स इस साल में.
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कार्यक्रम में आने के लिए.
0: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स फ्लैट, निफ्टी फॉल्स बाय 25 पॉइंट्स, ग्रोस जीएसटी कलेक्शंस इंक्रीज नियरली 15% टू ऑलमोस्ट 2 lakh crore रुपीज इन ऑगस्ट दिस ईयर, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज. दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंथ. सो टिल टुमारो, गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों

0: बनी रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों के कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा किसानों को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में जर्मनी के पर्यावरण मंत्री कार्स्टन श्नाइडर से मुलाकात की। बैठक में चक्रीय अर्थव्यवस्था, कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और टिकाऊ समाधान पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि भारत और जर्मनी जलवायु संरक्षण और नए प्रयोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब और ईसीआई नेट पर सम्मेलन होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन पर हाल में हुए रूसी हमलों में मारे गए 12 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। उन्होंने बताया कि ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई शहरों में आवासीय इमारतों और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization, and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek yesterday, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said, the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
2: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
1: The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan yesterday. The 26th Shanghai Cooperation Organization summit concluded with 13 key outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has chaired a roundtable on ease of doing business to scale India's data center ecosystem in New Delhi. In a social media post, he yesterday said During the round table, there

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. जी हां, रात के इस शांत सफर में हम और आप एक साथ हैं और लेकर हाजिर हूं मैं निशिगंधा, जहां हम करते हैं कुछ बातें दिल की, जो बातें कहने की नहीं बल्कि महसूस करने की होती हैं. और जब किसी की एक मुस्कान याद आ जाती है या फिर किसी की खामोशी जब हमारे दिल को सुकून दे जाती है, तब हमें नगमों की, गीतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होती है. तो चलिए इस खूबसूरत एहसास के बीच हम और आप सुनते हैं कुछ ऐसे ही गीत नगमे जिसमें दिल की कोई अनकही बात शामिल है. बहुत खूब कहा है किसी ने कि काम अब कोई ना आएगा बस एक दिल के सिवा. काम

निशी गंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपके साथ सुरभि। मोहब्बत क्या, मोहब्बत का सिला क्या, मोहब्बत क्या, मोहब्बत का सिला क्या, हमारा हाल हमसे पूछना क्या, हमें दुनिया में अपने गम से मतलब, हमें दुनिया में अपने गम से मतलब, जमाने की खुशी से वास्ता क्या, मोहब्बत क्या, मोहब्बत का सिला क्या, हमारा हाल हमसे पूछना क्या। और चलिए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं धूल का फूल फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर साहब और लता मंगेशकर की आवाज में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं निशिगंधा सुरभि के साथ। रात के इस बेहद खूबसूरत पहर में, जी हाँ, हम आपके साथ हैं। और ऐसे ही जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ख्याल आते ही ये दिल अपने आप मुस्कुराने लगता है। अब चाहे उनसे रोज बात हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी उनकी मौजूदगी का एहसास ही काफी होता है। शायद यही तो खूबसूरती है उस चाहत की, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती बल्कि एक प्यार भरी उम्मीद होती है कि सामने वाला जैसे ही उसे याद करता है उसके चेहरे पर एक खुशी और मुस्कुराहट छा जाती है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि तू अगर दिल नवाज हो जाए, तू अगर दिल नवाज हो जाए, सोज हम रंग साज हो जाए, दिल जो आगाह राज हो जाए, हर हकीकत मजाज हो जाए।

सिर्फ लहरा के रह गया आंचल, रंग बनकर बिखर गया कोई, फूल से खिल गए तसव्वुर में, दिल को छूकर गुजर गया कोई।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने कार्यक्रम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केन्द्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया।

दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों से सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वो मुंबई भी जाएंगे जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। 1995 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव सिंह ठाकुर को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। श्री ठाकुर कार्मिक मंत्रिमंडल और योजना विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त और नई दिल्ली स्थित मणिपुर भवन के प्रधान आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी संभालेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। रात की इस खामोश और खूबसूरत फिजा में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सुरभि आपके साथ और आज हम एक बार फिर उन तमाम खूबसूरत एहसास की बात करेंगे जिन्हें अक्सर हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते, लेकिन ये दिल चुपचाप उन्हें महसूस करता है। कभी किसी की मुस्कुराहट हमारा पूरा दिन बदल देती है तो कभी किसी की आवाज़ सुनकर मन को सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना काफ़ी देर के बाद मिल गया हो। बात करेंगे दिल की मोहब्बत की और दिल मोहब्बत की इस हेरा फेरी की भी, जहाँ पर कोई पास नहीं होता है लेकिन फिर भी दिल हमारा उसी के पास होता है। तो चलिए सबसे पहले हम और आप सुनते हैं हेरा फेरी फिल्म से किशोर कुमार और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में इस गीत को।

ये वक्त की हेरा फेरी है, और यकीनन वक्त जब पलटता है तो बहुत तरीके से पलट जाता है। जीवन में जब वक्त पलटता है तो कई वादे वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, और वहीं कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये दिल उम्र भर याद रखता है, रखना चाहता है। कभी किसी ने कहा था कि हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन फिर वक्त ने एक ऐसी करवट बदल ली कि वही आवाज़ सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। इन्हीं अधूरे वादों और पुरानी यादों को जब बैठकर महसूस करते हैं तब दिल दिमाग में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना बजने लगता है।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। अगला गीत लेकर आए हैं आपके लिए, फिल्म है पत्थर के सनम, मुकेश साहब की आवाज। बहुत खूबसूरत कहा किसी ने कि वो क्या गए पयामे सफर दे गए मुझे, वो क्या गए पयामे सफर दे गए मुझे, एक जज्बा ए जुनू ए असर दे गए मुझे। हर सिमत देखती है जो उनके जमाल को, लुत्फ हयात इश्क मगर दे गए मुझे, वो क्या गए पयामे सफर दे गए मुझे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापारों को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से दो दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ECI नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। एयर मार्शल विवेक खांडे ने कल भारतीय वायुसेना में महानिदेशक चिकित्सा सेवाओं का पदभार संभाल लिया है। उन्हें स्थायी रूप से भारतीय वायुसेना में तैनात किया गया है। एयर मार्शल खांडे दिसंबर 1988 में सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुए थे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं आपके साथ सुरभि। रात के 2:11 और 22 सेकेंड। चलिए आगाज करते हैं रात सुरमई प्रोग्राम का और आपको सुनवाते हैं आवारगी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज साहब ने।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दुनिया में यूं भी हमने गुजारी है जिंदगी, दुनिया में यूं भी हमने गुजारी है जिंदगी, अपनी कहां है जैसे उधारी है जिंदगी। आवाज मुझको ना दे ए गुजरे वक्त सुन, मुश्किल से हमने अपनी सवारी है जिंदगी। कोई खुशी भी पहलू में आई कभी नहीं, मेरी नजर में अब भी कंवारी है जिंदगी। हर एक तन्हा छोड़ के कहता है अलविदा, हर एक तन्हा छोड़ के कहता है अलविदा, कितनी ये बदनसीब बेचारी है जिंदगी। दुनिया में हमने यूं भी गुजारी है जिंदगी, अपनी कहां है जैसे उधारी है जिंदगी।

चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब कहा है किसी ने कि हर एक दर्द को हर्फ़े गज़ल बना दूंगा, हर एक दर्द को हर्फ़े गज़ल बना दूंगा, चला तो हूं कि तेरी राह गुजर दिखा दूंगा। गमे हयात में भी मेरे साथ साथ ही रहना, पयंबरी से तेरा सिलसिला मिला दूंगा, चला तो हूं कि तेरी राह गुजर दिखा दूंगा। न इंतजार न आहें न भीगती रातें, खबर न थी कि तुझे इस तरह भुला दूंगा, हर एक दर्द को हर्फे गजल बना दूंगा। अगर वहां भी तेरी आहटें न सुन पाऊं तो आरजू की बस्तियां जला दूंगा। न इंतजार न आहें न भीगती रातें, खबर न थी कि तुझे इस तरह भुला दूंगा।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं। चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं। तुम्हारे शहर में कितने हसीं आजार मिलते हैं। चले आते हैं चुपके से ख्यालों के महो अंजुम, मेरी तारीक रातों को बहुत गमखार मिलते हैं। तुम्हारे शहर में कितने हसीं आजार मिलते हैं। चमकते ख्वाब मिलते हैं, महकते प्यार मिलते हैं।

और चलिए रात सुरमई प्रोग्राम में चलते चलते अब आपको छोड़े जा रहे हैं अंदाज अपना अपना फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्ययोजना विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारत में डाटा सेंटर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता पर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डाटा सेंटर, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, बिजली उत्पादकों और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमों को सरल बनाने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब ईसीआई नेट पर सम्मेलन होगा। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। देश के ज्यादातर भागों में भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 17 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

पहली मुलाकात से सजा ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजा। ओपी नैयर का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। 1967 में साथियों ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दो दिलों की दास्तान। साथियों युगल गीतों को सुनने का अपना एक अलग ही आनंद होता है, अलग ही बातें होती हैं, अलग ही गुफ्तगू अंदाज होता है इन गीतों में। मित्रों हमारे जीवन में साथ का बहुत बहुत महत्व होता है। यही साथ जब गीतों के रूप में ढलता है, सजता है, तो उस गीत की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है।

मन्ना जी और वाणी जयराम की आवाज उसी सजा ये गीत अभी आपने सुना साथियों, परिणय फिल्म से ये गीत था। 1974 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी साथियों। जयदेव का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी रचना थी। साथियों साथ हो तो रूठना मनाना भी रिश्तों का एक अहम अंग बन जाता है।

शिकवे शिकायतें हों जीने का मजा और भी आता है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम रूठने की कोशिश खुद ब खुद करते रहें और कोई हमें मनाने ही ना आए। जी हाँ, बात दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर ही होनी चाहिए। अव्वल तो ये रूठने मनाने का सिलसिला हमें तो लगता है होना ही नहीं चाहिए, और हो तो भाई जल्द से जल्द मान भी जाएं और रूठे ना ये जरूर कोशिश करें। फिलहाल ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों से सजा, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आस का पंछी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में। साथियों, हमराही में हमारे दिल के या कहें जीवन भर के हमराही का विशेष महत्व होता है हमारी जिंदगी में। यदि वो आंखों से दूर हो तो दिल के और भी पास हो जाता है, जिसकी अनुपस्थिति हमें यकीनन बेचैन कर देती है।

ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय इस गीत में। मिस्टर एंड मिसेस 55 जो रिलीज हुई थी 1955 में, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। मित्रों, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी। और जब हमराही अच्छे हों तो सफर जीवन का हो या कुछ घंटे मिनट या लम्हों का, कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।

0: कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया ये गीत अभी आपने सुना। गुलशन बावरा की लिखी रचना थी मित्रों, मुकेश हेमलता की आवाजों का सुंदर जादू। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम विश्वास।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों से सजाई ये गीत था आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया। राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों, जिसका नाम है वारिस। साथियों अब एक खूबसूरत अदा लिए ये एक और गीत सुनते हैं, जिसमें एक मीठी प्यार भरी शिकायत का खूबसूरत अंदाज शुमार है।

दो दिल, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफी और आरती मुखर्जी की आवाजों का जादू था। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। हेमंत कुमार का संगीत था, कैफी आजमी की लिखी रचना। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी मित्र नीता अग्रवाल। रात्रि के 3:43 और 47 सेकंड हो चुके हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब आगे इस गीत की तरफ।

0: मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वर उसे सजाइएगी। तभी आपने सुना साथियों, सुदर्शन का संगीत था और प्रेम वर्धवर्धनी का लिखा ये रचना थी। माल रोड ये था फिल्म का नाम जिसका ये गीत था। वर्ष 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, और अब जागने की गुजारिश कर रहे ये किनको कर रहे, क्यों कर रहे, गीत सुन करके पता चलेगा।
1: जगो अनजन राज दुलारी, ढल गया चंदा कटी रात सारी। जगो अनजन

आरती मुखर्जी और सुबीर सीन की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। बेजन पाल ने ये संगीत दिया था इस गीत में और रामजी सिंह ने गीत लिखा था। फिल्म का नाम एक सूरत दो दिल। जी हां साथियों, एक सूरत दो दिल फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। 1968 रिलीज ये फिल्म थी मित्रों। साथियों, कोई भी मौसम हो उससे प्रभावित होती ही हैं हम, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो। और इन दिनों तो गर्मी बरसात दोनों ही मौसम बिल्कुल चल रहे हैं और खुशगवार और भी ज़्यादा मौसम हो जाता है जब सावन बरसता है। सावन के साथ साथ जब आगे मौसम बढ़ता है तो हर मौसम का कुछ इंतज़ार इस तरह रहता है कि सर्दी होगी तो ये करेंगे, गर्मी होगी तो ये करेंगे, बरसात होगी तो ये काम करेंगे। कुछ काम हमारे जो है मौसम पर भी निर्भर करते हैं। जी हाँ, लेकिन सावन का मज़ा अपना एक अलग ही होता है। और हाल ही में बहुत सारा सावन हमने गीतों के जरिए भी तो मनाया है, रोज़ बरोज़ मनाते हैं। फिलहाल सावन वाला गीत आपको बिल्कुल नहीं सुनवा रहे हैं, कोई और गीत सुनवा रहे हैं, मौसम मौसम की बात करता हुआ।

तलत महमूद और लता मंगेशकर के स्वरों से सजी ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। चित्रगुप्त का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था। फिल्म का नाम बर्मा रोड, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में।

चलेंगे गुनगुना के वफा के गीत गा के, संदेश पूर्ण प्यार भरा ये गीत अभी हमने सुना। मुकेश कृष्णा कल्ले की आवाजों से सजा ये गीत गहरा राज फिल्म से, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में। राज रविंदर का संगीत था, अख्तर रोमानी की लिखी रचना थी। इसी रचना के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार, समाचारों के बाद मिलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणाम वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। कल से शुरू हुआ 2 दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में पहला सम्मेलन है। इसका उद्देश्य टीम इंडिया की भावना को मजबूत करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज आयोजित होने वाले मोटर कार किट रिहर्सल के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और 12 खंभा रोड सहित अन्य सटे मार्ग शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। आज बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। वहीं 3 सितंबर को चुनावी साक्षरता क्लब और ईसीआई नेट पर सम्मेलन होगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 4:11 और 12 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। धरती पर सूर्य की सुंदर लालिमा अंधियारे के बाद उजाले का सफर जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना, जिम्बो फाइंड्स अ सन, ये था फिल्म का नाम जो रिलीज हुई थी वर्ष 1966 में। सपन जगमोहन का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये रचना थी। साथियों, रात की जो हम सफर होते हैं, सुबह होते होते कुछ थकान भी जाहिर हो जाती है और अपने घर की ओर चल पड़ते हैं हम सभी। जी हाँ, जैसे दिन में काम करते हैं उसी तरह से रात में भी ड्यूटी होती है हमारे कई साथियों की। जैसे हम भी इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे साथ भी कई साथी आकाशवाणी में भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसी तरह का एक गीत जो कहता है कि रात के हम सफर थक के घर को चले, आइए आपको सुनवाते हैं।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। और अब ये कौन आ गया, आइए सुनते हैं कौन आ गया।

सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे हैं, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना, आवाज गीता दत्त की, फिल्म का नाम बाजी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1951 में। साथियों, वाकई खुशी तो आ ही जाती है जब हम कहते हैं कौन आया वो आए, वो मतलब मन के मीत आए। मन के मीत किसी भी तरह से हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही रिश्ता हो, जीवन साथी का रिश्ता हो, हमराही का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रिय आता है तो चेहरे पे चमक तो आ ही जाती है, मन में खुशी तो आ ही जाती है, जैसे इनके आ रही है।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं वक्त फिल्म से। 1965 रिलीज ये फिल्म रवि का संगीत साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। वाकई साथियों, जब कोई प्रिय नजर आ जाता है या ऐसा लगता है कि वो आने वाला है तो चेहरे पे चमक तो आ ही जाती है, और इसीलिए तो कहा जाता है कि और जब वो आ जाते हैं तो हो सकता है वो कुछ कह दें, क्या कह दें, या दोनों मिलकर के कुछ कह दें। तो आइए सुनते हैं इसी गीत में, इसी गीत के साथ साथ इसके बाद ये गीत।

छोटे बाबू इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। 1957 रिलीज ये फिल्म, तलत महमूद लता मंगेशकर की आवाजें थी, मदन मोहन का संगीत, इंदिवर की लिखी रचना थी।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना तकदीर फिल्म से। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत हरियाली और रास्ता फिल्म से अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। और अब बढ़ते हैं एक और गीत की ओर। जी हाँ, उदासी छोड़ो, गम छोड़ो, सुस्ती छोड़ो, मस्ती में आ जाओ, अपने कर्म की ओर बढ़ो।

किशोर कुमार भूपेंद्र सिंह की आवाजों से सजी ये रचना प्रेम पुजारी फिल्म से अभी आपने सुनी। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सचिन देव बर्मन का संगीत था, नीरज की लिखी रचना थी। साथियों, हमारी जो पृथ्वी है हरी भरी वसुंधरा है, बहुत ही सुंदर है हर लिहाज से। जहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ, झरने, सब कुछ तो समाये हैं, सारी नज़ारे इसमें समाए हैं, चाहे वो हरियाली हो या कुछ भी। इस वसुंधरा को बचाने वास्ते हमें छोटे छोटे जो प्रयास हैं वही बस करने हैं, ज़रूर करते रहें उस तरह के प्रयास।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अभी आप सुन रहे हैं बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म से जो रिलीज हुई थी 1967 में। सतीश बत्रा का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना थी। साथियों और अब ये गीत

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना हरे कांच की चूड़ियां फिल्म से 1967 रिलीज फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की लिखी रचना, और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सच रही है ये रचना।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजी ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी शबाब फिल्म से 1954 रिलीज ये फिल्म नौशाद का संगीत था शकील बदायूनी की लिखी रचना और ये थी आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसी गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार, भोर जुहानी कार्यक्रम के साथ मिलेंगे समाचारों के बाद।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के संबंध में दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों पर चिंता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करने और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल अवसंरचना परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान, पेयजल प्रणालियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन का 2रा चरण। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के अंतर्गत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर बल दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3रे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। वे मुंबई भी जाएंगे, जहां वे हीरा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में आज आयोजित होने वाले मोटर कारकेड रिहर्सल के सिलसिले में यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक राजधानी के मुख्य रास्तों पर यातायात बाधित रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मथुरा रोड, जनपथ और बाराखंभा रोड सहित आसपास के अन्य मार्ग शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से 2 दिन के गोवा के दौरे पर रहेगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और दिल्ली में भी आज तेज बारिश की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितम्बर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 5:11 और 12 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी ये रचना आपने सुनी वंदना फिल्म से। 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। रवि का संगीत था, आसद भोपाली की लिखी रचना थी। साथियों, जीवन में संघर्ष कम नहीं हो।

कभी किसी तरह का संघर्ष, कभी किसी तरह का तन मन और धन, तीनों तथ्यों से जुड़ा हुआ। लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, मेहनत से बिल्कुल नहीं डरना है, बस मेहनत की करते रहिए, कर्म करते रहिए।

जी हाँ साथियों, मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। जिंदगी में परेशानियां उलझने आती ही रहती हैं, कभी सुख और कभी दुख, लेकिन रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, मेहनत से कभी नहीं डरना है और अपने को कमजोर कभी नहीं मानना है। जी हाँ, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। फिलहाल ये गीत आपने सुना बलबीर और मना जी साथियों के स्वरों में, बंटवारा फिल्म से। 1961 रिलीज ये फिल्म रही थी। एस मदन का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये रचना थी। और अब आइए गाते हैं, गुनगुनाते हैं इस गीत के संग संग में।

सुमन कल्याणपुर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। फिल्म का नाम जानवर, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में। साथियों, और इस गीत के बाद अब हम बढ़ रहे हैं एक और बहुत ही सुंदर गीत रचना की तरफ। जैसा कि कार्यक्रम है भोर सुहानी, उसी मुताबिक गीतों पर हम चल रहे हैं और समय अनुकूल जो गीत हम सुनते हैं उसमें सुनने में और भी आनंद आता है। आइए सुनते हैं ये शास्त्रीय राग आधारित रचना।

लता मंगेशकर मन्ना जी की आवाज से सजी ये सुंदर रचना आपने सुनी। वसंत देसाई का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम झनक झनक पायल बाजे, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1955 में। और अब इनकी सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं।